जब नजर आए वो सब्ज गुंबद, कह के सल्ले आला झूम जाए। ओ माई बिलव्ड अल्लाह, वेन विल माई टीयर्स ब्रिंग द फ्रूट्स। फिर मदीने की जानिब को जाए। माई दुआज, माई क्राइंग, माई वीपिंग, माई प्लीडिंग बिफोर यू, ओ अल्लाह, वेन विल आई सी द फ्रूट्स ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर मदीने की जानिब को जाए।

बहुत मुश्किल है मोमिन को कहीं बाहर बसर करना. टाइम विल कम एंड देयर विल बी ग्रेट फितना. It will be very difficult for the mu'min to be outside. So therefore he says, jab huzuri ka alam ata ho, unko afsanae gham sunaye, ab na jana ho mujhko, humko wapas chupke chupke ye mange duaye.

लाएंगी कब मेरी आहें। रंग लाएंगी कब मेरी आहें, फिर मदीने की जानिब को जाए। मुझको अपना बना लो करम से मुल्तजम पर ये मांगे दुआए। मुझको अपना बना लो करम से मुल्तजम पर ये मांगे दुआए। मुल्तजम पर ये मांगे दुआए। दोनों आलम की क्या है हकीकत, जितने आलम हो तुझ पर लुटाए। जितने आलम हो तुझ पर लुटाए। रंग लाएंगी कब मेरी आहें, फिर मदीने की जानिब को जाए। तेरा दर्द मोहब्बत सुना कर

अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिक

आशिक को जिक्र महबूब के बगैर कहाँ सुकून मिल सकता है। वे कैन एन आशिक हैव सुकून विदाउट द रिमेम्बरेंस ऑफ हिज बिलावड। वी विल स्टॉप हियर फॉर टुनाइट। दिले मुस्तरिब का ये पैगाम है, तेरे बिन सुकून है न आराम है। देयर इज द आशिक ऑफ अल्लाह तबारक व तआला। In this world, people who have got illicit beloveds, they don't get any kind of peace and change. They experience restlessness, and yet that is a muhabbat that is going to come to an end. And it brings nothing but restlessness, anxieties, worries and problems, as I always say. But Allah tabaraka wa ta'ala's ishq, dile mustarib ko ye paigham hai, तेरे बिन सुकून है न आराम है। दिले मुस्तरिब का ये पैगाम है, तेरे बिन सुकून है न आराम है। तड़पने से हमको फकत काम है, यही बस मोहब्बत का इनाम है। दिले मुस्तरिब का ये पैगाम है, तेरे बिन सुकून है न आराम है। तड़पने से हमको फकत काम है, यही बस मोहब्बत का इनाम है। मे अल्लाह तबारक व तआला गिव अस ऑल दैट काइंड ऑफ इश्क एंड मोहब्बत। That Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu had, the companions of Nabi alayhi salatu wasalam had, the awliya-e-siddiqeen have. It's not impossible.

याद कर नफ्स दुश्मन है दुश्मन को नाशाद कर रूह को नूरे तकवा से तू शाद कर नफ्स दुश्मन है दुश्मन को नाशाद कर अपने मालिक से उठ कर के फरियाद कर दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर दिल को नूरे खुदा से तू आबाद कर दिल को

हर कली। फूल मुरझा गए, चांदनी ढल गई, द मून दैट वॉज शाइनिंग ब्राइटली आफ्टर सम टाइम इट वेन्ड एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर, वेयर इज ऑल द ब्राइटनेस ग्रोन ऑफ दैट मून, एंड द फ्लावर विच वॉज इन फुल ब्लूम इट विदर्ड एंड इट फेल। फूल मुरझा गए, चांदनी ढल गई,